0: भाई जब उजाता मत तमा तो जंतु मगर की हुंदा छेन पूरा ही 100-100 टाने बुझन ना की जोबे लिया लिछे रे दिल दिया
1: टाइम चेक एकुन शुमोई बिकेल चाट्टा।